0: ब्रोकर्स अपनी इंश्योरेंस की हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस शर्ता लागू।
1: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
2: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार। ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
1: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट गोल्ड लीफ dairy.com।
0: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
3: ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, ता टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना। होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लिए बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम। कॉल राज 0494-763-700 और व्हाट्सएप टू फोल्ड लेंडिंग।
4: ओ पाजी, एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने।
5: हुन टेंशन छड़ो जी, गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान। बिजली दा बिल घट, टेंशन भी घट।
6: फिर लवाइए कित्थों?
5: सन करंट वालिया कोलों। 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
0: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246 ते। सोना चाहिदा?
7: भरोसा चाहिदा?
0: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा? चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा? गोल्ड लोन इजी एंड सेफ। रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493-536-042।
8: मैनू अपनी नवी दुकान ली प्रीमियम 3D इल्यूमिनेटेड साइन दी अर्जेंट लोड सी। क्विक साइनेज ने इन हाउस डिजाइन, प्रिंटिंग ते प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन सिर्फ 4 to 5 दिनां विच पूरी कर दित्ती। ग्लोइंग शॉप फ्रंट तो व्हीकल रैप्स तक, ब्रांड पूरी स्ट्रीट विच सब तो वख चमक उठिया। विक्टोरिया ते साउथ ऑस्ट्रेलिया विच 12 सालां तो साइनेज लीडर्स। अपनी बिजनेस नू चमकाओ। कॉल 1300-151616, quicksignage.com.au।

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू
1: की चाहिदा, ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा, मिल जुगा। सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस, ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490-054-596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।

0: अपना कर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, तो टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना। होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लिए बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम। कॉल राज 0494763700 और व्हाट्सएप टू फोल्ड लेंडिंग।
1: चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तो हाडे नाल ने एटीओ ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, एटीओ डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नो देओ मजबूत दिशा, आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तो हाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स। जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने, बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
2: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मैनू भी दस दे सीक्रेट।
3: अमृत, ए कमाल है गोल्ड लीफ डेरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
2: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
1: की हुआ
0: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
1: काका जी टेंशन छोड़ो, फोन चको, कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, इम्प्लॉयर स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-503-503
0: या 90-77-97-33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
0: याद रखो 9077-9733।
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
0: हर कदम तुहाडे नाल।
2: सोना चाहिदा,
3: भरोसा चाहिदा,
2: क्वालिटी ते बाईबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेम स्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ वी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493-536-042।

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाई बैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाई बैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
2: टेंशन मेरी टेंशन
3: की होया,
2: एथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार, मुकदे ही नहीं।
3: काका जी टेंशन छड्डो, फोन चको, कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नु, जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स, या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT, अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
2: या 90-77-93
3: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
2: याद रखो 9077-9733।
3: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
2: हर कदम तुहाडे नाल।
0: बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने। ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नो दियो मजबूत दिशा, आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स, तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।

0: अक्षरा जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच,
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सन विच भी तुहाडी सेवा विच। ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नु, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक, हर इमिग्रेशन प्रोसेस ली एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618 और पैरामेटा सिडनी अति न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
2: Hi, hello, this is Ali Asghar here on Radio Haji 1674 AM. सुनते रहिए, सुनाते रहिए, बजाते रहिए, जो करना है करिए।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी लिसनर्स।

0: अच्छा
1: ओही तो क्या सी
2: नहीं यार तू ही क्या मैं चुनिया गया वहां
1: फुल मीनिंग बेल्जियम जींस आ बीवाईडी कंपनी 1994 विद चाइना विच शुरू हुई सी बीवाईडी दी शुरुआत कार्स तो नहीं बैटरीज तो हुई सी बीवाईडी दे शॉर्ट 6 ऑस्ट्रेलिया विच प्लग इन हाइब्रिड यूटा
0: ओके अच्छा
2: गुड गुड गुड गुड
0: क्या बात है फतेह सिंह नाइस वाली जानकारी पंजाबी जो तुसी मुहैया कराई है बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा
2: वेरी गुड रफ स्लीपिंग वाले डॉगीज नहीं ना देखे ओहो तुम स्ट्रगल नहीं वेखा कुत्तियां दा स्ट्रगल नहीं वेखा तुम ओजला साहब तुम आने रो की हाल चाल ने तेग उस तो बाद तुहाडी वारी
1: रोटी जिंदगी है पर मैं मर सकना मैं किया
2: अच्छा जिंदगी नहीं है पर मैं मर सकना
0: आस होप
1: नहीं
2: ना
0: काफी हैवी हो गया सिर
2: वास्ते हां ओके पर मैं मर सकदा हूं ओके आस की है कि नहीं है जिंदगी नहीं है पर मैं मर सकदा हूं कि केड़ी चीज है भाई जेडी मर जांदी है
1: वाशिंग
2: हां जी
1: बात से जा
2: हां जिंदगी नहीं है पर फिर भी मर जांदा
1: हां जी
2: कमाल है यार चल हार गए यार
1: पहले तो एक गैस तो करना पड़ेगा
2: बैटरी
1: हाँ तो मैं क्या सोचा कि तुसी तो डल मैसेजेस नहीं चेक कर सकते
2: एक दो क्या ही
0: ये तो गल ही नहीं
2: ये तो क्या ही नहीं
0: इदा तो ना करो यार
1: लास्ट ईयर क्या सीगा
2: लास्ट ईयर
0: लास्ट ईयर
2: सानू लास्ट
0: की खादा है
2: सानू लास्ट डे दा नहीं चेता रहंदा
0: सही
1: लास्ट मंथ
2: हैं गुरजीत अंकल ने सानू भेजा ही मैसेज
0: अच्छा
2: घर वाला गुरजीत आंटी ने भेजा वा बैटरी जतेंद्र अंकल ने भेजा बैटरी साडा थोड़ी कसूर चेता भुल गया ही यार चेता भुल गया
0: बैटरी तक पहुंच नहीं लगे हौली हौली
1: ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਲੋਕੀ ਨੇ ਕੀੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨੇ ਪਨੀਰ ਪਨੀਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕੀੜਾ
2: ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ
0: ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਭਾਈ
2: ਵਾਹ ਸਾਡੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਥੈਂਕ ਯੂ
1: ਹਾਂਜੀ
2: फिर मेनू खुश करो कुत्ता किदा सौंदा
1: पहले बहुत

0: Hey. Oh, very good.
1: Very nice, Sami Saab. क्या बात?
0: ये फिनिशर कदी कदी अंदर बैटिंग कर रहे हैं एक बार इट्ठा है. Very nice.
2: लाल जी ने ना मैं पूछा मगर लाल जी तो सब तो ज्यादा दुख तुम तुम कदों होया दुखी ना तुम कदों होए हो आंदा मैं जदों दर्जी हो गया मैं देखिए मैं गया आंदे उन्हें मेरी शक्ल वेख के पूछा भी जेबा लाउणी करांदा

0: हैप्पी बर्थडे बसंत जी,
1: आज तो बर्थडे, हैप्पी बर्थडे होगा,
2: बहुत बहुत
1: बधाई, थैंक यू सैमसंग,
2: थैंक यू जी, थैंक यू।

0: ऑस्ट्रेलिया चा अपना कार लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, तो टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना। होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लई बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम। कॉल राज 0494763700 और व्हाट्सएप टू फोल्ड लेंडिंग।
1: बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने। ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नो दियो मजबूत दिशा, आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स, तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
2: टेंशन मेरी टेंशन
3: की होया,
2: एथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार, मुकदे ही नहीं।
3: काका जी टेंशन छड़ो, फोन चको, कॉल करो VY इमिग्रेशन नू, जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, एम्प्लॉय स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT, अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
2: या 90-77-97-33
3: या ईमेल info@vyimmigration.com.au।
2: याद रखो 9077-9733।
3: VY इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
2: हर कदम तुहाडे नाल।
4: हां जी
5: रेडियो।
6: रेडियो हां जी 1674। आस करदे हां दिन तुहाडा वधिया जा रहा होएगा। समा हो चुका अज दी कहानी दा। एक बेरोजगार मुंडा हर रोज नौकरी लभण जाया करे, पिछों मां फिक्र करती रहे, पता नहीं क्यों नौकरी का कोई हल नहीं हो रहा। जिदा की वह चाहता उदा की नौकरी नहीं मिलती, जिदा दियां मिलदियां ने उदा की वह करनी नहीं चाहता। बस इस चक्कर दे विच हर रोज खाली हाथ वापस परत आउंदा, सिर दे उत्ते प्यो की शाम ही नहीं है, घर के सारे खर्चे उन्हूं दीदे ने, घर दियां सारियां जिम्मेवारियां उन्हूं दीदियां ने। इसे वजह दे करके हुण वधेरे प्रैशर लैणा शुरू कर गया, उहदे चेहरे तों थकावट नज़र आउणी शुरू हो गई, उहदे चेहरे ते उह मजबूरियां दिखणियां शुरू हो गईआं ने। हालांकि मां नूं वी फिकर, पर मां शायद उह चीज़ां चेहरे ते नहीं आउण दिंदी। हुण जदों घर परतदा ते मां समझ जांदी है कि उहनूं नौकरी नहीं मिली, पर इह चीज़ उहनूं नौजवान नूं बहुती पसंद नहीं। नौजवान नूं इह वी पसंद नहीं कि जदों नहाउण चलिया जांदा ते मां चोरी चोरी उहदियां जेबां फोलदी है, मेरे बोझे चों की लभदी फिरदी है मां, पुछिया ते कदे नहीं उहने। पर मन ही मन उन्हें अपने आप के लिए एक जवाब घड़िया। उन्हें इदा लगता कि जिदा मां उहदी जेब दे विचों पैसे लभदी है, उन्हें इदा लगता कि उहदा पुत उहदे कोलों कुछ लुका रहा। यह चीज़ उन्हें होर दुख दिंदी है। हौली हौली हुण उन्हें हर रोज़ वेखना शुरू कर दिता, जिदा ही वह कपड़े ला के टंगदा आने बहाने मां उहदियां जेबां जरूर खोलदी। कदी उह सोचदा शायद मां नूं पैसों की जरूरत है, इस करके जेबां खोलदी है। कदी उहनूं लगदा कि मां नूं मेरे उत्ते यकीन नहीं है, इह सिद्धा मेरे कोलों क्यों नहीं मंग लैंदी। पर कह नहीं सकदा, मां घर दे विच कल्ली है, उह चाहुंदा नहीं आ कि मां दे नाल इस रवैये च गल करे। अंदरों अंदरी इस विषय के उत्ते रिझदा, पर उन्हूं की पता। मां जेबां इस करके चैक करती है कि किसी दिन जेब दे विच सलफास ही ना पा लिया, किसी दिन अक्या तरक्या कोई गलत स्टैप ना ले लवे। शायद इस वजह के करके मां हर रोज़ उहदियां जेबां चैक करती है। थोड़े दिन होर बीते, थोड़ा समा अगे लंघिया, उन्हें अपनी नौकरी की भाल जारी रखी, पर हाले भी उहदे कुछ हाथ नहीं लगा। हौली हौली वह पहलां दे नालों भी ज़्यादा मजबूर नज़र आ रहा। जिहड़ी चीज़ का मां नूं डर सी अज उही होया, हुण उहने भी शायद मन बना लिया। वो इस दुनिया दे विच किसे काम दा नहीं, वो अपनी मां दे अपने घर दे किसे काम नहीं आ सकता, कोई नौकरी करन जोगा नहीं हो। जिथे भी वह जाता उन्हों तरह तरह के बहाने मार के मना कर दिता जाता, कितों लियावे वो रिश्वत, कितों लियावे वो सिफारशा। हुण लगभग उन्हों यकीन हो गया सी कि मैनू नौकरी नहीं मिलनी, नौकरी नहीं मिलनी तो मैं इस जग दे अपने घर के किसी काम नहीं, मैं उल्टा बोझ हाँ अपनी माँ के सिर के उत्ते, जिहड़ी पता नहीं किदां किदां थोड़ा बहुता कमाउंदी है, कपड़े वाली मशीन चलाउंदी, दियां अखां रह गईआं ने, मैं उहदे उत्ते होर भार नहीं बनना चाहुंदा। अज जदों नहाउण दे लई गया ते मां दा सीना बाहर आ गया, जिहड़ी चीज़ दा डर सी अज उहने उही लभिया उहदी जेब दे विच्चों। समझ नहीं आती की करे, शायद उन्हें घर तो बाहर ही आ करन दी कोशिश की पर नहीं कर सकया, घर तक पहुंचा। वह खरीदी सलफास हले जेब दे विच ही पई है, मां दे हथ लग गई है। समझ नहीं आती हुण करां की, इंतजार कर रही है कि किहड़ा वेला होवे पुत बाहर निकले उहदे नाल गल करा, पता नहीं शायद अंदर ही ना कुछ लैके वड़ गया होवे, काली काली दे विच दरवाजा खड़काया, पुत अपनी नाराजगी दे विच बाहर निकलिया। अज उहदे अंदरों भी गुबार बाहर आया, मां फरोल लिया मेरिया जेबां, ये तो याद ही नहीं कि मैं जेबां दे विच की पा के लिया। जे तैनू लगता मैं निकम्मा, मैं कुछ कमा के नहीं लिया सकता, जां तैनू लगता कि मैं तेरे तो बड़िया गल्लां लका के रखियां ने, जां तैनू ये लगता कि मैं कमाई कर आउणा पर तेरे हाथ ते नहीं धरदा, ते मां तू मैनू मूँह ते कह सकदी ही, इदां क्यों मेरे कपड़े फरोलदी रहनी है, क्यों मेरे बोझे फोलदी है। मैनू भी पता लग जांदा, हाथ च फड़ी दवाई पुत नूं विखाउंदिआं कहण लगी, इसे करके मेरा पुत मैनू डर सी, मैनू डर सी कि मेरा पुत इन्ना प्रैशर ना लै जाए नौकरी दा, घर दे खर्चिआं दा, इस वजह दे करके मैं तेरियां जेबां फरोलदी रही। सब तो वड्डी पूंजी ते तूं है मेरी, नौकरी दा की आवे, देर सवेर मिल जानी है, ना ही मिलूगी, रोटी तो चल ही रही है, कदी रोटी खाधे बिना ना मैं आप सुती ना तेनू सौण दिता। दोवें रज के रोए ने अज, जिदां चिरां दा गुबार अंदर भरिया सी अज अथरूआं दे राही कढ दिता। मां दी गोदी दे विच सिर रख के सारियां फिकरां भुल गईआं, सारे स्ट्रैस, सारे डिप्रैशन, सारी चिंता दूर हो गई, हुण उहनूं कोई फिकर नहीं रहा, मां दी गोदी है ना सारा कुछ भुला दिंदी। तैनूं पता वे जदों तू सौं जाना मैं तां तेरी पग भी तेरे सराहणे चुक लैनी आ। ओ क्यों मां, मैनूं तेरा प्यो नहीं भुलदा, करजिआं दे झंबे ने ਇਸ ਪੱਗ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਪੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੁੱਖ ਤੇ ਟੰਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੋਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਘਰ। ਮੇਰਾ ਬੀਬਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੋਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਜਹਾਨ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੱਡ ਪੈਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅੱਜ ਸਕੂਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਹੱਥ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਗਰਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ। ਕਿੰਨੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਜਾ ਲਿਆ ਕਦੇ ਸੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਲੜਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਂ ਕੋ ਸਿੱਖੇ। ਕਿਸੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੱਸੀ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਭੱਜ ਨੱਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚਮਕਾਂ ਦਮਕਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ, ਲੋੜ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਨ ਦੀ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਰਜਵੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਨ ਹਲਕਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਸਰੇ ਆਸਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਆਪੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੌਂਸਲਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤੋਰੀ ਰੱਖਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੌਂਸਲਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਰਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਣਦੀ ਸਰਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਲਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸੀ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣੀਏ, ਤੇ ਲਾਈਫ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੂਗੀ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਹੁਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।

0: जी तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
1: की तुसी ऐसी थान लभ रहे हो जो तुहानू तुहाडे लिए अहम चीजा नाल जोड़ी रखे। पेश है सिल्वरब्रुक, माउंट डुनीड विच एक नवी कम्युनिटी जिथे हुण विक्री चल रही है। वॉन पॉन्स रेलवे स्टेशन, शॉपिंग, स्कूल, पार्का अते आउण वाला खेड कॉम्पलैक्स सिर्फ थोड़ी दूरी ते हन। नाल ही जिलोंग, मेलबर्न अते सर्फ कोस्ट भी बिल्कुल नेड़े हन। डेवलपमेंट विक्टोरिया वल्लों विकसित सिल्वरब्रुक एक सरकारी सहायता प्राप्त डेवलपर दा भरोसा लेके आउंदा है जो अजिहियां कम्युनिटीज तैयार कर रहा है जिथे लोग फल फूल सकण। होर जानकारी लई silverbrookmtdunedin.com.au ते जाओ, जा सिल्वरब्रुक माउंट डुनीड सर्च करो।

0: ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस की हर लोड़ ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।
1: स्मिथ्स लेन बाय मोवैक विच अपने भविख की शुरुआत करो, हुणे कदम चुको अते स्मिथ्स लेन दे चुने हुए लॉट्स दे सीमित समय ले मिलन वाले $30,000 तक दी लैंड रिबेट दा फायदा लवो। चुनवे योग लॉट्स दे हाउस एंड लैंड पैकेज बुक करन ते हिस्सा ले रहे बिल्डर्स वालों वादू $15,000 डिस्काउंट मिल सकता है। ए ऑफर 15 सितंबर 2026 नु खत्म है, अजे हे मौके ज्यादा देर नहीं रहंदे। होर जानकारी लई अज ही smithslane.mirvac.com ते जाओ। नियम शर्तां अते योग्यता दे मापदंड लागू हन। ऑफर 15 सितंबर 2026 खत्म है।
0: की चाहिदा, ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा? मिल जुगा, सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490-054-596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: सारे दुख तो तैयार, ना ना इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हॉर्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है कि प्लास्टिक के डब्बे च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
1: तुसे भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ द प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: हां जी हां जी, ओए हां जी हां जी,
3: हां जी रेडियो।

0: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग। तुन्ना ज्वेलर्स, परोसे दी निशानी।
1: हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे।

कुछ यहो जहा गीत जिन्हों तुसी अपने दिल दे विच जगह दिती है ते कुछ नवीं गल्लां क्योंकि जिहड़ी आर्टिस्ट की होंद है जिहड़ी मनमोहन वारस की होंद है कमल हीर की होंद है अपने आप च कुछ नहीं हैगी सिर्फ गीतां करके है जिहड़े गीत ने असीं गाए हुए उन्हां करके साडी पहचान है उही अपनी पहचान थोड़े रूबरू करन जा रहे हैं आज शुरू करिए फिर आओ जी

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की हुआ
0: इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
1: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-93
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल।

मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नूं उनां दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसीं एथे इंडियन मसाले दालां ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। आओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हां जी हां जी, ओए हां जी हां जी,
3: हां जी रेडियो।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की होया
0: अथे इमिग्रेशन दे एने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
1: काका जी टेंशन छड़ो फोन चको कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
2: या 90-77-93
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
2: याद रखो 90779733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
2: हर कदम तो आड़े नाल।

0: की चाहिदा ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा मिल जुगा सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना जो स्टडी वीजा स्किल्ड वीजा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा डामा पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490054596 गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ आओ थोड़ा कोई हल करिए
1: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है तुसी एथे इंडियन मसाले दाला ग्रोसरी दा हर सामान वाजिब रेट ते ले सकदे हो पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394 दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच
2: लादे फेरा।

0: फ्लाइट्स मेलबर्न तो इंडिया या पाकिस्तान, सिडनी तो इंडिया या पाकिस्तान, कितने भी जा सकती है।
1: अटेंशन प्लीज, दिल कहता है कर जाना है, फ्लाइट सर्च करके थक गए, स्विच करो हाई फाई ट्रेवल से, योर लोकल ट्रेवल एजेंसी, रेटेड 4.9 स्टार ऑन गूगल। बुक नाउ पे लेटर। फ्लाइट बुक करनी है आज ही कॉल करो 1300-533-311 या ऑनलाइन बुक करो highfitravels.com.au।

0: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार। ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

मन जाने मन कोय, मनै सुरत होवे मन बुद्ध, मनै सगल भवन की सुध, मनै मोचोटा नहीं खा, मनै जम कै साथ न जाय। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय, मनै मार्ग ठाग न पा, मनै पास्यों प्रगट जाय। मनै मग न चलै पंथ, मनै धर्म सेती संबंध, ऐसा नाम निरंजन हो जे को

एक बार जो तुझ पावे साई पली का, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जाप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पाकसार, असंख मोहन लिव लाए तार, कुदरत कौन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुझ पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवट हत्या कुमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कुड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेच मल पाख खाए।

ना पाए जाए। ए अंत न जाने कोए, बहुता कहिए बहुता होए, वड्डा साहेब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ। ए वड ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे को जाने सोए, जे वड आप जाने आप आप। नानक नदरी करमी दात, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तुमाए, केते मंगे जोत अपार, केत्या गंत नहीं विचार, केते खप टुटे वेकार, केते लैले मुकर पाहे, केते मूर्ख खाई खाए, केतिया दुख भूख सदमार। ए भेदात तेरी दातार, बंद खलासी पाने होए, और आख न सके कोए, जे को खाए क आखन पाए, ओ जाने

एक ओंकार सतगुरु प्रसाद जाप श्री मुख वागपात सही दसवीं छपे संतो प्रसाद चक्र चेनी हर वर्ण जात हर पात नहीं जाय रूप रंग हर रेख पे को कह न सकत कह अचल मूर्त अनुभव प्रकाशम तो कह जाय कोट इंद्र इंद्रान सा सहान गणित जाय तिर भवन में सुर नार्य सुर नेत नेत बंतरन कहत तब सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण सुमत जाम क्रिया छंद नमस्तंग अकाले नमस्तंग कृपाले नमस्तंग रूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग अभेखे नमस्तंग अलेखे नमस्तंग अकाये नमस्तंग अजाये नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अभंजे नमस्तंग अडामे नमस्तंग अठामे नमस्तंग अकर्मंग नमस्तंग अतर्मंग नमस्तंग अनामंग नमस्तंग अतामंग नमस्तंग अजीते नमस्तंग अभीते नमस्तंग अभाये नमस्तंग अडाये नमस्तंग अनिले नमस्तंग अनादे नमस्तंग अछेदे नमस्तंग अगाजे नमस्तंग गंजे नमस्तंग भंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग अबारे नमस्तंग सुएक नमस्तंग अनेक नमस्तंग अभूते नमस्तंग अजूपे नमस्तंग निर्कर्मे नमस्तंग निर्भर्मे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निर्भेषे नमस्तंग निर्नामे नमस्तंग निर्कामे नमस्तंग निर्धाते नमस्तंग निर्घाते नमस्तंग निर्दूते नमस्तंग अभूते नमस्तंग अलोके नमस्तंग अशोके नमस्तंग निर्तापे नमस्तंग अथापे नमस्तंग त्रिमाने नमस्तंग निदाने नमस्तंग अगाये नमस्तंग अबाये नमस्तंग त्रिवर्गे नमस्तंग असर्गे नमस्तंग प्रभोगे नमस्तंग संयोगे नमस्तंग अरंगे नमस्तंग अभंगे नमस्तंग अगमे नमस्तरमे नमस्तंग जलाशय नमस्तंग निराशय नमस्तंग अजाते नमस्तंग अपाते नमस्तंग अमजवे नमस्तस्त अजवे अदेशंग अदेशे नमस्तंग अभेशे नमस्तंग निर्तामे नमस्तंग निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वद्याले नमो सर्वरूपे नमो सर्व नमो सर्व खापे नमो सर्व थापे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले नमस्तस्तु देवे नमस्तंग अभेवे नमस्तंग अजन्मे नमस्तंग सुबन्मे नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे नमो सर्व रंगे नमो सर्व पंगे नमो काल काले नमस्तस्तु द्याले नमस्तंग अवर्णे नमस्तंग अमरणे नमस्तंग जरारंग नमस्तंग कृतारंग नमो सर्व दंदे नमो सत वंदे नमस्तंग निर्साके नमस्तंग निर्भाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्तत रागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्व सोखं नमो सर्व पोखं नमो सर्व कर्ता नमो सर्व हर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले चात्री चांतो प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अभू है अलेख है अभेक है अनाम है अकाम है अदय है अभय है अजीत है अभीत है त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अभूत है अभर्ण है अगंज है अभंज है अजूज है अजंज है अमीक है रफीक है अदंध है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अला है अजा है अनंत है महंत है अलीक है निरश्रीक है निर्लंब है असंभ है

प्रतिशय अदीर्षय अदृश्य अकृषय भगवती छंतो प्रसाद कथते के आछे जदेश के आभिज विषय के आगाज कर्म के आभंज भरम के आभिज लोक के आदित शोक के अवधूत वर्ण के बेपूत कर्ण के राजम प्रवाह के धर्मक तुजा है के आशोक वर्ण के सर्वा अवर्ण के जगतं कृति है के छत्रं छत्री है के ब्रह्मं स्वरूपे के अनुपव अनुपे के आद अदेव है के आप अभेव है के चक्रं बहीन है के एक अधीन है के रोजी रजा कह रही में रहा कह के पाक बेअब है के गैबिल गैब है के अफल गुना है के साहल सुना है के कारण कुनंद है के रोजी दहंद है के राज ग्रहीम है के कर्म करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य के सर्वत्र दानिय के सर्वत्र गौणे के सर्वत्र पौणे के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पैसे के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र भाओ के सर्वत्र देश के सर्वत्र पैसा के सर्वत्र काल के सर्वत्र पाल के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र शोक है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देश के सर्वत्र पैसा के सर्वत्र मानिय सदैव प्रदानिय के सर्वत्र जापिय के सर्वत्र थापिय के सर्वत्र पाने के सर्वत्र मान के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वंग कलीम के परमंग फहीम के अकाल अलाम के साहिब कलाम के हुसन रजू है तमामल रजू है हमेशा सलाम सली खुदा में गरीब उल शिकस्ते गरीब उल परस्ते बुलंदर मुकाने जमीन उल जुमाने तमीजुल तमाम रजूअल निदाने हरीफुल अजीम रजाय यकीन अनेकल तरंग है अभेद है अभंग है अजीजुल निवाज है गनी मुल खिराज है निरकत स्वरूप है त्रिमुक्त भूत है प्रभगत प्रवाह है सो जुग सुदा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तल सलाम है सदैवल कलाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आदरूप है अनाद स्वरूप अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्गन त्रिवादे अगजे अगाधे शुभंग स्वरूपागे सुसर्वान रागे तिरपुगत स्वरूप है अच्छे जय छूत है कि नरकम परनाश है पृथ्वी परवास है निरकत परवाह है सदैव सदा है बेपुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है निरकत सदा है बेपुगत परवाह है अनुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है चाचरी छंद अभंग है अनंग है अभेक है अलेख है अभर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अधूत है अनास है उदास है अधंध है अभंद है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अभेक है अडा है अगा है असंभ है अभंग है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजात है चारपड़ चंतो प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग कर्मंग सर्वंग धर्मंग सर्वंग जुक्ता सर्वंग मुक्ता रुआल चंद तो प्रसाद नमो नर्क नासे सदैव प्रगासे अनंग स्वरूपे अभंग भूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निर्साग शरीक है अमितो अमिक है सदैव परवाह है अजय है अजा है भागवती छंद तो प्रसाद के जाहिर जहूर है हाजर हजूर है मेशल सलाम है समस्तल कलाम है के साहिब दिमाग है के उसने चराग है के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी दहंद है के राज करहंद है करीमुल कुमाल है के हुसन जमाल है गनीमुल खराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल शकन है हिरासल फकन है कलंकं परनास है सुमस्तल निवास है अगंजल गनीम है रजायक रहीम है सुमस्तल जुबा है के साहिब के राह है के नरकं परनास है बिस्तल निवास है के सर्वल गवन है के हमेशल रवन है तमामल तमीज है समस्त अदीस है परंग परंग ईश है समस्त अदीस है अदेसल अलेख है अभेसल अभेक है जमीन जुमा है अमीक उमा है करीमल कुमाल है गजुर जमाल है के अचलंग प्रकाश है के अमितो सुबास है के अजब स्वरूप है के अमितो प्रभूत है के अमितो प्रसा है के आत्म प्रभा है के अचल

गुणगन मुदाम हर बर अगंज हर नर प्रभंज अन गण प्रणाम मुन मन सुनाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनभव अनास मुन मन प्रगास गुणगन प्रणाम जलथन मुदाम अनछिज अंग आसान अभंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिसविस अभंड जल थल महंत दिसविस बेअंत अनपौ अनास त्रित तर तुरास आजान वा एक सदा ओंकार आद कथनी अनाद खल।

अंठन अबार आडीठ तरम अतटीठ करम अन बरन अनंत दाता मंत हर बोल मन संतो प्रसाद करना ले आर काले है कलखंडल है मैं मंडल है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है त्रित के तरण है जाके करण है मनमानी है जगजानी है सर्वंकार है सर्वंकार है सर्वपाशी है सर्वनाशी है करनाकर है विश्वम्भर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है करनाकर है अजपाजप है अतपात्व है अकृताकृता है अमृतामृता है अमृतामृता है करनाकृत है अकृताकृता है तरनीतृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृता है अजबाकृत है अमृतामृत है नर नायक है कलघायक है विश्वम्बर है करुणालय है निर्मनायक है सर्वपायक है पाव पंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जब जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ताकर है हरताहर है परमात्मा में सर्वात्म में आत्म बस है जस के जस है प्रियांग प्रिया छंद नमो सूर सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बिंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम संक्षात रूपे नमो परंग ततंग अतंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो त्यान त्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पोज पोजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंगूते कलंकार रूपे अकलंकार लंके नमो आसे आसे नमो बांग बंके अभंगी स्वरूपे अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी कामे एक अश्री छंद अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनास अकाश अगंज भंज अलख पख अकाल दयाल अलेख अभेख अनाम अकाम अगा अडा अनाथे परमाथे अजूनी अमूनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मं अभर्मं अगजे अलेखे प्रियांग प्रजा छंद नमस्तुल प्रणामे सुमस्तर प्रणासे अगंजन अनामे समस्तल निवासे निर्कामं बभूते सुमस्तं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सोतर्मं प्रभूते सदा सचिदानंद सतरंग प्रणासी करीमल कुरंदा सुमस्तल निवासी अजायब बभूते गजायब गनी में हरियंग करियंग करीम रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुयंबं सुमं सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे।

श्रीपद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे। वीर अपार बड़े बड़े आर अवचार इसार की तार बछैया, तोर देश बुलंद बवासन माते गजान के मान मलैया। गाड़े गड़ान के तोरण हर सुबातन ही चकचार लवैया। साहेब श्री सबको सिर नायक जाचक अनेक सो एक दवैया। दानव देव फिनन निशाचर पूत पवेख पवान जपेंगे। जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे। पुन प्रतापन बार जय तुन पापन के बहु पुंज कपेंगे। सात समूह प्रसन्न फिरे जग सत्र सबै अब लोग जपेंगे। मानव इंद्र गजिंद नरातम जोन त्रिलोक को राज करेंगे। कोट स्नान गजात गदान अनेक स्वंबर साज भरेंगे। ब्रह्म हेश्वर विष्णु सचिपत अंत बसे जम फास परेंगे। जे नर श्रीपत

0: नहात फिरो लिए सात समुन्द्रन लोग गयो पर लोग गो आयो बास कियो बखियान सो बैठ कै ऐसे ऐसे वैस बतायो साच कहो सुन लियो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो कहूं ले पायन पूतरियो सिर कहूं ले लिंग ले ढलकायो कहूं लिखियो हर अवाची दिशा में कहूं पूछा को शीश नवायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कूर क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो।
1: कवियो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुट सब तुम कावो आप हाथ दे मोय बचावो सुखी वसै मोरो परवारा सेवक सिख सब करतारा मोर इच्छा निज कर दे करिया सब बैरन को आज संगरिया पूर्ण होए हमारी आशा और भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याओ जो बर चाहो सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरिया मरण काल का त्रास नवरिया पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तुजो करियो रच्छा राख लियो मोय राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बन दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दशकंता काल पाए ब्रह्मा बपरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो जमन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताए हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जचन उपजायो आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार किसी को हमारी सकल प्रजा जिन आप सुवारी शिवकन को शिवगुण सुख दियो सतन को पलमो बद कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते पुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतम दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने काट काट के पट पट की जाने जब उदकर करा कर तारा प्रजा तरत तब दे अपारा जब आकर्ष करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ देते बदन सृष्ट सब थारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही तेरे निरालम जानत बेद भेद अल आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंब ताका मूड उचारत पेदा जा को पेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनमानत महामूड किछ भेद न जानत महादेव को कह सदा शिव निरंकार कार चिंत नहीं पेव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत पिन पिन तोय तेती तुमरा लखा न जाए पसारा कहब सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग प्यो राव कई पूपा अंडज जे राज से तज कीनी उत्पुज खान बहु रज दीनी कहो फू राजा हर बैठा कहो सिमट पयो शंकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए चंभव आज जुगा सुरु सुजंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखु बार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच करो रन काता जे आज तो तब सरनी परे तिन के दुष्ट दुखद है मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिन के तुम संकट सब तारे जो कल को एक बार तिहाय है ताके काल निकट नहीं आए है रच्छा होए ता सब काला दुष्ट अरिष्ट तरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहन हर हो।

पवित संगत सुभाइया कहदे पवित सुनदे पवित से पवित जिनी मन वसाया कह नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया।

0: नानक गुरु प्रसाद जी सहज उपजै ए सहसा इवजा।
1: जियो मैले बारो निर्मल, बारो निर्मल जियो तमैले, तिन जन्म जुए हारिया ए तिसना वड्डा।

तही गुणी संसार परम सुत्ता सुत्या रहन विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वस्या बोले अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनु अंत दिन हर

माया अगन सब को जई करता खेल लचाया जांत सपाना ता जमया परिवार भला पाया लिव छुड़की लगी तरसना माया अमर वरताया ए माया जित हर विसरै मोह उपजै पौ दूजा लाया कह नानक।

वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु की साजी नवाजी, गुरु स्वरूप गुरु खालसा सतसंग दी अज दे पावन पवित्र फरमान विच सतगुरु पातशाह ने एक अहम नुक्ते का जिक्र किया है। आपा आम करके जिहदे कोल चार पैसे होण, जिहदी आग्या उहदे कहने विच होवे, ओनू आम करके आपां कहने भी फलाना बड़ा भागा वाला है, उहदे धी पुत उहदी आग्या च ने, ओनू वाहिगुरू ने बड़ा कोई दिता है, लेकिन भागा वाला कौन है? उहदा जिक्र अज दे पावन पवित्र फरमान विच गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह ने किया है। पैसिआं नाल कोई भागा वाला नहीं, केवल ते केवल बच्चों की आग्या घर होने करके कोई भागा वाला नहीं। असली भागा वाला कौन है? हजूर जिवें जिक्र करनगे सरवण करिए, मन की एकाग्रता लई यतन करो, ते बोलो सतनाम।

नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आपका पुण्य दर्शन में। मैं हूं आपका दास, जो अध्यात्म जगत के सागर से ज्ञान के मोती आपके लिए चुन चुन कर लाने का प्रयास करता है। आप श्रवण के माध्यम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी से अभी तक कर रहे हैं ब्रज में भगवान की बाल लीलाओं के पुण्य दर्शन। कृष्ण का नाम लेते ही हमारे मुख से अनायास ही एक और नाम निकलता है, राधा। हम कहते हैं राधे कृष्ण, राधा कृष्ण। किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर श्रीमती राधा रानी कौन है? भगवान श्री कृष्ण को समझने के लिए राधा रानी को समझना इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? श्रीमती राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण की हलादिनी शक्ति कहा गया है। सरल शब्दों में कहें तो भगवान के दिव्य प्रेम और आनंद की शक्ति हैं श्रीमती राधा रानी। श्री कृष्ण भगवान हैं और राधा रानी उनके प्रति शुद्ध और सर्वोत्तम प्रेम की अभिव्यक्ति। इसीलिए राधा और कृष्ण को अलग अलग देखना बहुत कठिन है। जहां कृष्ण हैं वहां राधा हैं, और जहां राधा हैं वहां कृष्ण का प्रेम अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकट होता है। राधा तत्व इतना सरल नहीं है कि मैं इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर कुछ कह पाऊं। इसीलिए श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करते हुए अपने वरिष्ठ वैष्णवों के मुख से सुने शब्दों को मैं यहां पर सिर्फ दोहराने का प्रयास करूंगा। क्या है राधा रानी भाव, जानते हैं इस

0: आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तो हाड़ी नाल ने ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नो देओ मजबूत दिशा, आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स, तो हाड़े बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
1: आप सुन रहे हैं

पहुंचना चाहिए। बिना श्रीमती राधा रानी की अनुमति के हम भगवान श्री कृष्ण की छोटी से छोटी सेवा भी नहीं कर सकते। वो दो नहीं, एक है। तमेव माता च पिता तमेव। राधा रानी स्नेहमयी माता है, प्रेममयी माता है। राधा केवल किसी स्त्री, लड़की या कन्या का सामान्य नाम नहीं है। राधा भगवान श्री कृष्ण की अपनी ही अतरंग शक्ति का स्वरूप है। हलादनी शक्ति स्वरूपा है श्रीमती राधा रानी। वे भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से यानी लेफ्ट पार्ट से उनकी प्रणय अवस्था में प्रकट हुई दिव्य शक्ति है। वैसे तो श्री कृष्ण गोविंदम आदि पुरुषम है, वे हमारे प्रेम करने वाले परम पिता हैं और हमें वास्तविक स्वरूप तथा हमारे स्वाभाविक धर्म की शिक्षा देने के लिए वे अपने दाहिने भाग से अपने ही समान, शक्ति में समान किंतु रूप और वर्ण में भिन्न बलराम जी को प्रकट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के एक्सपेंशन राइट पार्ट से निकले बलराम जी और लेफ्ट पार्ट से निकली श्रीमती राधा रानी। बलराम जी हमें भगवान की सेवा कैसे करनी है वो सिखाते हैं। श्रीमती राधा रानी वे हमें भगवान से स्नेह करना, भगवान से प्रेम कैसे करना है ये सिखाते हैं। अब राधा अष्टमी का पावन अवसर हमारे सामने ही है। कल राधा अष्टमी है। ब्रज में इस प्रेममयी रानी का प्राकट्य कैसे हुआ, उनके माता पिता कौन थे और उनके आने से बरसाना कैसे आनंद से भर गया, ये सब जानते हैं थोड़ी देर में। मैं यूं गया यूं आया।

0: ब्रोकर्स अपनी इंश्योरेंस की हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस शर्ता लागू।
1: आप सुन रहे हैं पुण्य।

पुण्य दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दास श्रीमती राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण की हलादिनी शक्ति और शुद्ध प्रेम की सर्वोच्च स्वरूपा है। तो राधा रानी कौन है? राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति है। स्वरूप शक्ति का अर्थ स्वयं का रूप। भगवान श्री कृष्ण शक्तिमान है और राधा रानी उनकी स्वरूप शक्ति है। शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं होता, इसीलिए राधा और कृष्ण में भी कोई अंतर नहीं है। मित्रों, श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की अपनी ही दिव्य शक्ति है। ब्रज के बरसाना की वो पावन धरती जहां राजा भृषभानु और माता कीर्तिदा भगवान के भक्त हैं और उनके हृदय में एक दिव्य संतान की अभिलाषा थी, किंतु कल वो प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है। ब्रज की पवित्र धरती पर एक दिन राजा भृषभानु यमुना जी के तट पर पहुंचते हैं। वहां उन्होंने एक अद्भुत और अलौकिक दृश्य देखा। ब्रज की धरती वैसे ही भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के कारण पवित्र हो चुकी थी, किंतु अब मानो ब्रज किसी और दिव्य आनंद के स्वागत की तैयारी कर रहा था। प्रकृति का वातावरण, यमुना जी का तट, ब्रज की गलियां, वहां के रहने वाले गोप गोपियां, सब कुछ जैसे किसी शुभ घटना की प्रतीक्षा कर रहे हों। आखिर कैसे हुई श्रीमती राधा रानी प्रकट, ये जानेंगे कल यानी पवित्र श्री राधा अष्टमी के दिन हम सब मिलकर। तब तक श्रीमती राधा रानी का नाम जपिए और अपने अपने काम पर चलिए। बोलो राधा रानी की जय। मुझे दीजिए आज्ञा, फिर लेकर आऊंगा आपके लिए पुण्य दर्शन। मैं हूं आपका दास। नमस्कार।

0: कहता है कर जाना है, फ्लाइट सर्च करके थक गए, स्विच करो हाई फाई ट्रेवल से, योर लोकल ट्रेवल एजेंसी रेटेड 4.9 स्टार ऑन गूगल। बुक नाउ पे लेटर। फ्लाइट बुक करनी है आज ही कॉल करो 1300-533-311 पे या ऑनलाइन बुक करो highfivetravels.com.au पे।
1: किथे वज गई तेरी गड्डी?
2: गड्डी तो ठीक हो जू पर इंश्योरेंस वालियां नू लीगल वालियां नू इत्थे परदेस विच समझाऊंगा किवें?
1: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है
3: सिंक स्मैश रिपेयर वालियां ने।
1: इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलती है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लाई कॉल करो 0383857748 ते। सिंक स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
0: की चाहिदा? ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा? मिल जुगा, सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490054596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।
4: किचन का स्टाइल डल लगता, बाथरूम वैनिटी सिंपल जया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, फाड़े घर नु बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड, मेल्टन।
5: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
6: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
5: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
7: Attention ladies and gentlemen, this is your captain. 30 flights Melbourne to India या पाकिस्तान, सिडनी तो इंडिया या पाकिस्तान किते भी जा सकती है।
0: Attention please, दिल कहता है कर जाना है, फ्लाइट सर्च करके थक गए, स्विच करो हाई फाई ट्रेवल से, योर लोकल ट्रेवल एजेंसी रेटेड

0: 4.9 स्टार ऑन गूगल. बुक नाउ पे लेटर. फ्लाइट बुक करनी है आज ही कॉल करो 1300-533-311 थे या ऑनलाइन बुक करो highfivetravels.com.au थे.
1: आ किथे वज गई तेरी गड्डी?
2: गड्डी ता ठीक हो जू पर इंश्योरेंस वालियां नू लीगल वालियां नू इत्थे परदेस विच समझाऊंगा किवें?
1: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है
3: सिंक स्मैश रिपेयर वालियां ने.
1: इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलती है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते. फ्री लीगल एडवाइस लाई कॉल करो 0383857748 ते. सिंक स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल.
0: की चाहिदा? ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा? मिल जुगा. सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशन. ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक भरोसे योगना जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील करदे ने. हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490054596. गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ. आओ थोड़ा कोई हल करिए.
4: किचन का स्टाइल डल लगता, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो. आ गया जी जे स्टोन मेसन, पार्टे करनो बनाए एकदम क्लासी. असी बनाने हां डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल. हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल. कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड, मेल्टन.
5: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है. मेनू भी दस दे सीक्रेट.
6: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा. न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार. ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स. बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है.
5: तुसे भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो. विजिट goldleafdairy.com.
7: Attention ladies and gentlemen, this is your captain. 30 flights Melbourne to India ya Pakistan, Sydney to India ya Pakistan kithe bhi ja sakdi hai.
0: Attention please, dil kehta hai kar jana hai, flight search karke thak gaye. Switch karo Hi-Fi Travels te, your local travel agency. Rated 4.9 star on Google. Book now, pay later. Flight book karni hai? Aaj hi call karo 1300-533-311 te. Ya online book karo highfivetravels.com.au te.
1: Aa kithe vaj gayi teri gaddi?
2: Gaddi ta theek ho ju. पर इंश्योरेंस वालियां नू लीगल वालियां नू इत्थे परदेस विच समझाऊंगा किवें?
1: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंक स्मैश रिपेयर वालियां ने. इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलती है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते. फ्री लीगल एडवाइस लाई कॉल करो 0383587748 ते. सिंक स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल.

अपना कर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, तब टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना। होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लिए बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम। कॉल राज 0494763700 और व्हाट्सएप 2Fold Lending।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की होया
0: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे नहीं
1: काका जी टेंशन छड़ो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-93
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल
2: व्याह खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास तुन्ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड डायमंड बुलियन सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 डॉनस्टेल स्ट्रीट डैंडीनोंग तुन्ना ज्वेलर्स परोसे दी निशानी
3: बिजनेस चलाना आसान नहीं पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने ATO ऑडिट्स टैक्स डिस्प्यूट्स ATO डेट्स बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस अपने बिजनेस नो देओ मजबूत दिशा आज ही विजिट करो sebipartners.au सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स
2: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनीना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है तुसी एथे इंडियन मसाले दालां ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार ग्रोसरी दी होम डिलीवरी ले नंबर लिख लो 0430-123-394 दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनीना विच

0: फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी का मसला, कोई इमिग्रेशन की समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तो हाडे ले कर देने। बंसल लॉयर्स, तो हाडा भरोसा, साडा तजर्बा, ते जित अपनी। कॉल 4229058600 और विजिट bansallawyers.com.au।
1: की चाहिदा? ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा? मिल जुगा, सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशन। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490054596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।
2: जदो तुहाडे लई जां तुहाडे किसे प्यारे लई सही होम केयर प्रोवाइडर चुनन दा समा आउंदा है, तां माई केयर दे साडे केयरस मेलबर्न अते इस तों बाहर भी तुहाडी मदद लई तैयार हन। असीं बजुर्ग आस्ट्रेलिया लोकां नू निजी देखभाल योजनावां, उन्हां दी भाषा बोलन वाले केयरस अते समर्पित देखभाल साथी नाल घर विच ही रहन विच मदद करदे हां। 1-800-642-273 ते फोन करो जां माई केयर होम केयर लिख के खोजो। ए है MICAR।
3: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मैनू भी दस दे सीक्रेट।
4: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
3: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
5: स्मिथ्स लेन बाय मोवैक विच अपने भविष्य की शुरुआत करो। हुणे कदम चुको अते स्मिथ्स लेन दे चुने हुए लॉट्स ते सीमित समय लई मिलन वाले $30,000 तक दी लैंड रिबेट दा फायदा लवो। चुनवे योग लॉट्स ते हाउस एंड लैंड पैकेज बुक करन ते हिस्सा लै रहे बिल्डर्स वल्लों वाधू $15,000 डिस्काउंट मिल सकदा है। ए ऑफर 15 सितंबर 2026 नू खत्म है। अजिहे मौके ज्यादा देर नहीं रहंदे। होर जानकारी लई अज ही smithslane.mirvac.com ते जाओ। नियम शर्तां अते योग्यता दे मापदंड लागू हन। ऑफर 15 सितंबर 2026 नू खत्म है।
6: सोना चाहिदा?
7: भरोसा चाहिदा?
6: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा? चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा? गोल्ड लोन इजी एंड सेफ। रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493

0: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
1: की होया
0: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
1: काका जी टेंशन छोड़ो, फोन चको, कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नु जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT, अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स ते माहिर बैठे ने। हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-93-33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
0: याद रखो 9077-9733।
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
0: हर कदम तुहाडे नाल।
2: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले। जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 डॉनस्टेल स्ट्रीट डैंडीनोंग। तुन्ना ज्वेलर्स, परोसे दी निशानी।
3: बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स, वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने। ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नु देओ मजबूत दिशा। आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स, वाइज टैक्स एडवाइजर्स, तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
2: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नु उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दाला, ग्रोसरी दा हर सामान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम वी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानु वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
4: विक्टोरिया SEC वापस आ गया है। मैं बात करने के लिए विंड के साथ यहाँ हूँ। तो आप कह रहे हैं कि SEC नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश कर रहा है, जैसे पवन, सौर और भंडारण, और हमें घरों में बिजली इस्तेमाल कर पाने में सहायता कर रहा है। ओह, तो वे बिजली बिलों को कम करने, उत्सर्जन में कमी लाने और नई नौकरियां पैदा करने में सहायक होंगे। धन्यवाद विंड। SEC विक्टोरिया वासियों के लिए विक्टोरिया को बिजली प्रदान कर रहा है। sec.victoria.com.au विक्टोरिया सरकार मेलबर्न द्वारा अधिकृत।
5: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं, डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
6: की चाहिदा? ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा? मिल जुगा, सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट, पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490-054-596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।
7: जदो तुहाडे लई जां तुहाडे किसे प्यारे लई सही होम केयर प्रोवाइडर चुनन दा समा आउंदा है, तां माई केयर दे साडे केयरर्स मेलबर्न अते इस तों बाहर भी तुहाडी मदद लई तैयार हन। असीं बजुर्ग आस्ट्रेलियाई लोकां नूं निजी देख